बाबलू जो संभ कर मदम माजो भर गए मामच गर्मी बार आया मिना तो गर्मी में डिपे मामम अगर बुखार समाज वाय खुरी जो बाल